या जान जाए हुसैन इमाम हुसैन मौजूद अब्दुल शमसी अब्दुल शमसी इमार इमार बिन उमर उमर बिन बुकर उमर बुकर उमर मौत कर गया ना तुम लोग आदान साल आदान साल मैं कर दो अपने बाप मत आदान साल मुझे मैं मुझे लेमी तो मुझे हंजा जाए या जान जाए मैं अंबु मुझ में ऐसे चारों Thank you.

गल्ली पे दम मिला इनसे तन में शेफ दौर कैसे रोपे दे कहे तो पंजाई संतिया पुपामा आई दफामा या जतल नहीं बनूंगा वो कोलम में ये ना डुआयों पन ना दे इकाए कुनो इकाए पीगा कुनो इकाए सालू इकाए कनारी Atenang di mati asisnya yang baru. Mengina salim bengkau pernah ke mana? Dari kai boyfriend bengkau. Bukan lo mengina dasar pernah ke mana?